आजकल एआई वॉइस फेक वीडियो को माध्यम ठगी करने डिजिटल लेंडिंग भन्द झूठो लोन एप बनाकर स्कैनिंग करने क्रिप्टो र इन्वेस्टमेंट ट्रैप फेक बैंक सर्वे व अफर को माध्यम ठगी करने ठगर को बिक्री बढ़े होना इसका ठगर सावधान रहो कुछ समस्या पड़े में व आपू ठगी बैंक में व नजिके प्रहरी में खबर करो वित्तीय तथा विद्युतीय माध्यम को कारोबार को सचेतना का लगी स्थानीय बैंक द्वारा जारी

0: कोशी प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय,
1: सेलिब्रेटिङ द हिस्ट्री एन्ड फ्युचर अफ शङ्खुवस्प, रेडियो शङ्खुवस्प 95.5 मेगाहर्ट्ज।
2: You're listening to the greatest beats, hits, news, views on 95.5 Radio Sankawasava.

0: आजकल एआई वॉइस फेक वीडियो को माध्यम ठगी करने डिजिटल लेंडिंग भन्द झूठो लोन एप बनाकर स्कैमिंग करने क्रिप्टो र इन्वेस्टमेंट ट्रैप फेक बैंक सर्वे व अफर को माध्यम ठगी करने ठगर को बिगबिगी बढ़े होना इसका ठगर सावधान रहो कुछ समस्या पड़े में वा आपू ठगिए बैंक में वा नजिके को प्रहरी में खबर करो वित्तीय तथा विद्युतीय माध्यम को कारोबार को सचेतना का लागि स्थानीय बैंक द्वारा जारी
1: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाख को बीमा तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता
2: सूर्यज्योति सही प्लान
3: सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवन को लागि